0: पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले बिहान को 7 बजे।
1: श्रोताहरू अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौ देशभक्तिका गीतहरू।